हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलाम तोरल संजर नहीं मैं। जहां बीनी मेरी फितरत है, लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू सुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।

0: 9 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular. Mithiye jo.
6: Nawain. ईरान ते 14 साल अग मरियल तारीख जो तबाह कन पाबंदियों भी नाकाम थियो। 5 महीना अग ईरान के गैर मशरू तौर हथियार फिटा करण जे शर्त भी नाकाम थी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राजी अमरीकी धमकियों जे रद्द अमल ते चयो आए त ईरान ते मुआची सब का वडी पाबंदी मड़ी वयूं आहिनि, पर उन जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी के अल शिफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराए बीर अडेला जेल मुंतकिल करते हुकूमत खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराने जो ऐलान। पीटीआई रोडन रस्तन से एहतजाज करण से गड कौमी असेंबली तां इस्तीफान की धमकी भी दई छी। 27 सेप्टेम्बर से लॉन्ग मार्च वारो सड भी बरकरार। इस्लामाबाद में पीटीआई अपोजिशन के बेन जमायत के गडियल इजलास का मीडिया से गालाइंदे अगवाणन पीटीआई बानी के शिफा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमत अदालती फैसले से गड आईन ए कानून की भी तोहीन कई है। अज तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौर है तो हुकूमती अमल का को जवाब न थो ठे तो अस इन ऐवान में वेठल हजू। जैसे अदालती हुकूमत अमल कर मुश्किल है तो जमहूरियत कि हल्दी। सलमान अक्रम राजा हुकूमत शिफा अस्पताल बहर हजूम गड थो कूड़ो बयान ठा हाने फैसलो हवा में करो है तो ही केस अदालत में विड़जे या रोडन ते। कसम खणी चवां तो बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। सेहत के मामले के सियासत वरचाण न घुर्जे। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसफ पीटीआई बानी की अख बेहतर थी रही है। ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन इलाज जारी है। माजी में नवाज शरीफ की सेहत से मजाक उड़ाए वो बानी पीटीआई पान भी मजाक उड़ाया जैनियो केतरी वीडियोज पुण मौजूद आन इन हाँ एहसास हों तो बीमारी एक हकीकत होंगी है। हुकूमत पेट्रोलियम शे अगन में वाद कर छी। पेट्रोल 3 रुपया 81 पैसा

0: सघनि। कंहिं बि सूरत में हुकमरान जो पीछो न छॾियो वेंदो। आई पी ख़िलाफ़ कामयाब जिदोजहद करण ते बिजली खां 10 रुपया सस्ती थी। हुकूमत अवाम जी ॻाल्हि न ॿुधी त जल्द हड़ताल सॾु ॾिनो वेंदो। बलोचिस्तान खे दरपेश मसइला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियण घुर्जनि। जेको मसइलनि जे अघु खणी उहो मोहबे वतन नथो थी सघे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप खे ख़िताब कंदे चयो त बलोचिस्तान दुश्मन मुल्क जो हथ आहे। असां फील्ड मार्शल सां गॾिजी कराची खां चमन N-25 शरा तमीर करे बद सूबे ते कम कंदड़ कयो पियो वञे। मजदूरी कंदड़नि खे सुञाणप जे बुनियाद ते क़तल करणु जाइज़ न आहे। बलोचिस्तान वसीलनि ते पहिरियों हक़ सूबे जे अवाम जो आहे, जॾहिं त चारई सूबा गॾिजी हलंदा तॾहिं ई मुल्क तरक़ी कंदो। खैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स जे ऑपरेशन थी सरगर्म। फितननि हिंदुस्तान जा 19 दहशतगर्द जहनम भेड़ा। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्स ऐं पुलिस ॿिन्ही सूबनि में गॾियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। KP जे बनून, उत्तर वज़ीरस्तान, औरगज़ई ऐं खैबर वारनि इलाइक़नि में भारतीय सरपरस्तीअ में सरगर्म फितनल ख़्वारिज सां तालुक़ रखंदड़ 12 ख़ारजी मारिजी विया। बलोचिस्तान जे मस्तुंग, मश, खुशदार, पंजोड़ ऐं ॿियनि इलाइक़नि में फितनतुल हिंदुस्तान सां तालुक़ रखंदड़ 37 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान वॾे मक़दार में बारूदी मवाद, हथियार, IEDs ऐं मोटरसाइकिल हथ कयूं वयूं। मुल्क जे अमन इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाइण वारी कोशिशुनि खे असराइते अंदाज़ में नाकाम बणायो वियो। मुल्क मां दहशतगर्द जे मुकमल ख़ात्मे ताईं मुहिम जारी रखी वेंदी। मौलाना फज़ल ख़ान अब्दुर जो गॾियल इतिहादु जिदोजहद करण ते इतफ़ाक़ में महमूद ख़ान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर महमूद, सलमान अकरम, असद केसर ऐं ॿियनि शिरकत। हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण लाइ हुकूमत दौर जो गॾियल इतिहादु ठाहिण ते इतफ़ाक़। मौलाना फज़ल रहमान चयो त मुल्क अंदरि हर माण्हू पाण खे गैर महफ़ूज़ सम्झी रहियो आहे। मईशत तबाह थिए पई, अमन अमान किथे बि नज़र न पियो अचे। नवनि सूबनि लाइ न का बि तयारी न आहे, न वरी माहौल आहे। बाहि भड़कियल आहे, मथां वरी विरहाङे जूं ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि। ॿियनि सूबनि में हुकूमती रिट न आहे, अहिड़ियूं सूबनि जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त PTI बानी बाबति फ़ैसिले ते अमल न करे सुप्रीम कोर्ट जी तोहीन कई वई। को बि मुल्क कानून खां सवाइ नथो हली सघे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो इन आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहे। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو نہ سمجھیں، فقل، تو آپ ان کی بے رخی، بے حسی، بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فقل، آپ کہیے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ۔ کس سے کافی ہے؟ ان لوگوں کی چالوں کے خلاف، ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے۔

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
1: थ्री स्टोर्स न्यू
2: पर जल्द शिकस्त ईरान हुकूमत जो

वधाइण जो मतलब इहो न आहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़तम थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जॉइंट बेस खां ॾखण जे शहर मेटल बेस रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूदि मुआदो करणु चाहे थो, पर तेहरान अञा ताईं सही मुआदे लाइ तयार न आहे। हाणे ॾिसणो पवंदो त सूरतयाल कहिड़ो रुख तयार करे थी। अब्न हर्मुज ऐं सामूंडी किनारनि वारे ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी। ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारे पॉलिसियुनि खे बि नाकाम थींदे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची जे अमेरिकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मड़ियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरूत तौर हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। वज़ीर आगाह अब्बास इराकची अमेरिकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मड़ियूं वयूं आहिनि, पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान। पीटीआई रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकियुनि बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सर्वे बरक़रार। इस्लामाबाद में पीटीआई अपोज़िशन जे ॿियनि जमायतुनि जे घर इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमत अदालती फ़ैसिले कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम घर थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें ॾींदासीं, उन्हनि में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत है, और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है, और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं, क्योंकि एक बार पोलियो इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात 1166
3: पे। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: 11 AM is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: ईरान ते हमलन जो इम्कान खत्म थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ज्वाइंट बेस एंड खां ॾखण किरोना जे शहर मटेरियल बेस रवानगी खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूदि

करण चाहे थो पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयार नाहे। सूरतहाल कहिड़ो रुख आबना हरमुज ऐं समुंडी किनारनि वारे समूरी ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी।

0: ईरान ते मुआशी पाबंदियुनि वारी पॉलिसी बि नाकाम थींदी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जे अमरीकी मुआशी पाबंदी वारे फ़ैसिले ते तनक़ीद। ईरान खे धमकियूं पुराणियूं, चेहरा नवां आहिनि। ईरान ते 14 साल अॻु मरियल तारीख़ जूं तबाहकुन पाबंदियूं बि नाकाम थियूं। 5 महीना अॻु ईरान खे गैर मशरू तौर हथियार फिटा करण जी शर्त बि नाकाम थी। ईरानी परडेही वज़ीर आगा अब्बास इराक़ी अमरीकी धमकियुनि जे रदे अमल ते चयो आहे त ईरान ते मुआशी सभ खां वॾियूं पाबंदियूं मरियूं वयूं आहिनि, पर उन्हनि जो नाकाम थियण तय आहे। पीटीआई बानी खे अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो कराए ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत ख़िलाफ़ तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल। रोडनि रस्तनि ते एहतजाज करण सां गॾु क़ौमी असेंबलीअ तां इस्तीफ़ाउनि जी धमकी बि ॾेई छॾी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सन बि बरक़रार। इस्लामाबाद में पोज़ीशन जे ॾियल इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाननि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमती अदालत फ़ैसिले सां गॾु आईन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन अहवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करण मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। सलमान अकरम राजा चयो आहे त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीकु आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वरचाड़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। माज़ी में नवाज़ शरीफ जी सिहत ते मज़ाक उॾायो वियो। बानी पीटीआई पाण बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियो। अहसास थियो हूंदो त बीमारी हिकु हक़ीक़त हूंदी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: महरान की सकाफ़त से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 7:30 AM This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो काडो सिर्फ अर्ज रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
5: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं इससे जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
6: जिंदगी एतमाद सा कुरान।

0: खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीए।
1: Okay।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
1: It's 12 p.m. This transact is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. Mitiye jo ma
7: taiyar na hai. पर जल्द शिकस्त कबूल कंदो ईरान हुकूमत जो खजानो खाली आहे हाणे मुआहिदो अमेरिका जे शर्तनि ते थींदो मुआशी दबाव वधाइण जो मतलब इहो नाहे त हाणे ईरान ते हमलनि जो इम्कान ख़त्म थी वियो आहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ज्वाइंट बेस एंड खां ॾखण किरोना जे शहर मटेरियल बेंच रवानगीअ खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे त ईरान अमेरिका सां इख़्तिलाफ़नि बावजूद मुआहिदो करणु चाहे थो पर तेहरान अञा ताईं सही मुआहिदे लाइ तयार न आहे हाणे ॾिसणो पवंदो सूरत हाल कहिड़ो रुख इख़्तियार करे थी आबना हरमुज़ ऐं समुंडी किनारनि वारे समूरी ज़मीनी रस्तनि ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे मुआहिदो थियण ताईं ईरानी नाकाबंदी जारी रहंदी।

0: खातनि जे गडि॒यल इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो आहे त बानी पीटीआई खे शिफ़ा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमती अदालत फ़ैसिले सां गॾु आइन ऐं कानून जी बि तोहीन कई आहे। अॼु तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त हुकूमती अमल खां पोइ को जवाज़ नथो ठहे त असां हिन ऐवान में वेठल हुजूं। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी? सलमान अकरम राजा चयो आहे त हुकूमत शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां हुजूम गॾु थियण वारो कूड़ो बयानो ठाहियो। हाणे फ़ैसिलो अवाम खे करणो आहे त हीउ केस अदालत में विढ़जे या रोडनि ते। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़णु न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, हुन लाइ बि इलाज जारी आहे। माज़ी में नवाज़ शरीफ जी सिहत ते मज़ाक उॾायो वियो। बानी पीटीआई पाण बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूद आहिनि। हुननि खे हाणे अहसास थियो हूंदो त बीमारी हिकु हक़ीक़त हूंदी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
2: सुन रहे थे FM नेटवर्क पर।
3: आज भी मटियारी की है, सुनते रहो GX।
4: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असां पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो लयल आहे, मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम। बार बार पोलियण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बेहतर थी वञे। असां जेको ॾींदासीं हुननि में कमाल न थींदी। जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो मां जेके माफ़
5: हक़ सच जो आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे. त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी. पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए.
3: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
4: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
3: GAFM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी।

0: PM.
1: This time check is brought to you by White Ish.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में बि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है

में जुड़ने के लिए और साथ मौजूद है। तो जनाब मौजूद रहने के क्या तरीके कार मौजूद होते हैं जो कभी सुन रहे होते हैं, ऐसे जो सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारे इंतजार अम्मी आए, खालाएं, बाजियां और पापा की पत्नियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वाले से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ आपके 40 साल की समय लाने के लिए, तो बिल्कुल आपके 40 साल की समय आकर से काम के आगाज में हम यहाँ पर आज एंजॉय की लिस्ट में, और ये से मुखातिब आप लोगों से होते हैं तो बताते हैं कि आज के पूरे 3 बजे

ओके जी, वापस आ चुकी हूँ यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं। सर्दी का नाम मसीह की सत्रह के साथ माधुरी मेरे साथ कौन है मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए मेरी आवाज आप लोगों के हाथ सही आ रही है, क्योंकि मैं अगर एक दो दिन प्रोग्राम नहीं करती ना सिस्टम का ये अदा वाले जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टम बिगाड़ देते। ओके जी, सर यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम के साथ साथ आप लोगों को आज के प्रोग्राम का जरा टॉपिक बताया जाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, तो बताते हैं ताकि आप लोग सवाल के ऊपर जरा आएं और बातें करें। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप फर्ज करेंगे आज भी अपनी जिंदगी में फर्ज ही करते। बिल्कुल, आज भी हम फर्ज करने वाले हैं। अगर आप रात को सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है ना वो पीछे चले गए हैं। हाँ जी, आप अपनी जिंदगी के 10 साल

0: अच्छे चले गए हैं तो आप क्या करने वाले, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी जिंदगी में जो हमने बहुत सारा अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लिया है कुछ ऐसी चीजों के पीछे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे काम जो हमें नहीं करने चाहिए थे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सुबह उठे आपको पता चले कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। जानना चाहती हूँ मैं, सब कुछ जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1-4। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर चलना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप जल्दी से आइए, हमारा पेज आपको मिल जाएगा और वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी, तो उसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक जरूर किया करें क्योंकि मुझे थोड़े लाइक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए, देन आप कॉमेंट कीजिए। हाँ, यो तरीको ज्वाइन करो तुम प्रोग्राम जो हिस्सो बढ़ जाता वो मुख्य बधाई हो, अगर तुम सुबह हो तो खबर पे अची वे तो 10 साल पानी जिंदगी जी अगते अची वो यानी हलिया आया हो अगते ये हलिया आया हो तो तुम कदा वो 10 साल जी तक लगे तो शायद मुंह विञाए छाया शायद मुंह वेस्ट कर छाया तो तुम कदा अगर तक वो 10 साल वापस मिली वन। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और चाचा खालिद हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, अचानक कहाँ गायब हो जाती है, मैं तो यहीं पर हूँ। कहते ऐसा ना हो किसी दिन अचानक FM नेटवर्क से गायब हो जाए और हम ढूंढते रह जाए, हमारे पास तो आपका अता पता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अदा, शाल आहे अदा, खुश आयो सफा, अरे गाना बुधायो भला सुख, अच्छा ठीक है मैं समझी, बस डेडिकेट यू एंड सर खालिद को, चलें ठीक है। उनके अलावा चाचे भी हदीका क्या नहीं जी गाने जी फरमाइश करिए ना, थोड़ा पानी मैसेज की वराय सेंड करो, छोटा मुख्य लगे तो ये कमेंट मत ही बनी हुए ना। नजीर को समय सुन रहे बलोचिस्तान से, भाई को वेलकम कहा जाता है, और ऐसे ही आप नजीर भाई क्या कहते हैं, हमारा किरदार हमारी आदत का मजमुआ होता है, आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमल की फसल आगे उगेगी, एक अमल का बीज बोएंगे तो आदत की फसल आगे उगेगी, अगर आदत का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल खाएंगे, और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उठेगी। क्या बात है जी, क्या
1: इट्स 1:30 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरर ब्यूटी क्रीम।
3: जरूरत क्यों कृपा है, और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है, और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: अभी बुधोपिया जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पी, पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

वेलकमिंग वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जल्दी नमस्ते। बिल्कुल जी, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए क्योंकि जिंदगी में मस्ती का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो कहते हैं पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मस्ती का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें साथ साथ चले तभी जिंदगी में मजा आता है। रोजे के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको वेलकम एंड खुश आमदीद। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, फर्ज कर लीजिए अगर आप सुबह उठते हैं, नींद से जागते हैं और आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, यानी कि तवा उठो था तांजी अख खुले थी 10 साल तव पानी जिंदगी जो पोते हलिया वाया हो तो तवहां अच्छा कंदा 10 साल तवे लगंदो तव रिग्रेट थी 10 साल मूं पानी जिंदगी जहा वेस्ट कया या वरी तवे लगंदा तो न बाबा ही 10 साल मां पानी जिंदगी ला तमाम बेस्ट गुजारा है, यानी कि बेस्ट तरीके से तव पानी जिंदगी के सही तरीके से सुठी ऐं सिधी लाइन में वेठी वया आयो। छो त कुझु माण्हू बाक़ी हूंदा आहिनि जेके पंहिंजी ज़िंदगी जो हुननि खे ख़बर हूंदो आहे त मूंखे किथे पहुचणो आहे, किथे मूंखे पंहिंजी ज़िंदगी खे पहुचाइणो आहे, पर कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा जेके भई चवंदा आहिनि बसि गुज़रे थो ॾींहुं गुज़री वियो बसि सही आहे। उन्हनि खे को टार्गेट न आहे त उन्हनि खे को गोल न आहे हूंदो। बिल्कुल जी, हा सही चवंदा आहिनि पैसे जो मस्ती ॾिसो ॿई चीज़ू गॾु आहिनि, ॿई चीज़ू गॾु ई मज़ो ॾींदियूं आहिनि। अच्छा मुझे आवाज का बताइएगा, सही आवाज मेरी आ रही है? क्योंकि मैंने एक तो पंखा भी बंद कर लिया आप लोगों के लिए, दूसरा ये कि मैंने थोड़ा सा मतलब गुचड़ मुचड़ करके देखा सिस्टम को, मुझे थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ शायद ठीक है। वधी के तां बुधायो त वाकई आवाज ठीक अचे पई या न? ओके जी, सो तव्हां सां गॾु मौजूद आहे। पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो जिन माण्हुनि कोन कयो आहे, छो त बाबा इहे तव्हां सभिनी जो कमु आहे, तव्हां सभु जल्दी जल्दी कयो। अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम आपका कहते हैं अच्छी आवाज के साथ लाजवाब, सॉन्ग रिक्वेस्ट है आज, रिक्वेस्ट गाना लाजमी चलाइएगा। बिल्कुल तव्हांजो गानो हलायूं था। अब्दुल अहद अबासी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद नीरन जखरानी भाई हमारे साथ ही, जेकब अबासी आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। अच्छा अली अकबर बिरोही कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नूरुल्ला बरना हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। बोले चलती का नाम गाड़ी, यस, लेकिन हमारा चलती का नाम मस्ती है। रशीद कोजो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं जी हैदराबाद से। जीशान अली बोजदार हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अखलाक बलोच भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माय स्वीट एंड क्यूट आरजे सिद्रा, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है, खैर से आ गई, वेलकम टू शो स्वीटी, वेलकम कहते हैं, हैप्पी आपको भी। और उनके अलावा फहीम कहते हैं वाकई घंटी दिल में बजंदी आई नो। खुशी भाई कहते एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। नहीं, धोखा खाया करे, धोखे खाया करे, अच्छी बात होती है, इंसान जो अखियूं खुली वेंदियूं आहिनि। जब तक हर कंहिं ते अंधो यकीन कंदा आहे न, उहो थोरो ख़बर पइजी वेंदी आहे त छा करणो आहे ज़िंदगी में। दर्दे दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माई फेवरेट आरजे, आ गई आप चंदा जानी, बिल्कुल आ गई, आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं। सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आप कैसी हैं, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल, यस आई एम डूइंग वेल, आप बताएं कैसी हैं। और शौकत बलोच कहते हैं सदरा तुम इतना बोलती हो, घर वाले तुम्हें रहने देते हैं घर में, अञा ताईं त रहण ॾियनि था, बेज़ार आहिनि पर छा था करे सघनि, उन वटि कोई ऑप्शन बि न आहे, सो बर्दाश्त करणो पवंदो। हिते तव्हांखे हिकिड़ो गानो ॿुधायां थी, ॾाढो भलो गानो अथव, हिनखे इंजॉय कयो, मां थोरो इते ई आहियां, कारी कोन थी वञा, छो त साह निकिरेव।

मैं तलाश आता हूँ, पर सुन के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और टॉपिक को भी फॉलो कीजिए।

अच्छा जरदे बोल के दी माशाल्लाह माशाल्लाह सो क्यूट, आज जी चंदा को नजर ना लगे किसी की, दुआ है कि मेरी चंदा जानी हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच प्यारी जान, आप भी खुश रहे। और शौकत बलोच लगते हैं कि जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, जो बातें दिल तोड़ती है वही तो आंखें खोलती है। डिसो डिसो डिसो या गाल सही मामा गोरे।

हम आगे आ जाएंगे और फिर वही सो जाएंगे. ये पॉसिबल नहीं होगा. नहीं तंगाल के समझो. अखलक भाई कहते हैं कसम से. हाँ ॾिसो ॾिसो तव्हांखे पछताव आहे माना पंहिंजे ज़िंदगी में. हुजणु घुरिजे हुजणु घुरिजे. अच्छा अदा चए थो सची ॿुधा राति को मूवी ॾिठी? न न मूवी त कोन ॾिठी. सोचा नी छा ॾिठो. ड्रामो बि कोन ॾिठो. कुझु बि न. ईअं बसि मुंहिंजे दिमाग़ में अहिड़ी चीज़ूं अची वेंदियूं आहिनि. तव्हां ख़बर आहे थोरो क्रेक दिमाग़.

अंजी के असां ॿुधो ओके जी ओके ॾाढो वॾो गानो ॿुधी करे मज़ो आयो. ही वारो ट्रैक असांजे लिस्ट में आहे, सो असां हिन खे बि ॿुधंदासीं. अली सफ़र ऐं आज़मीन छोरी आहे मां बेग जी आवाज़ में. ॾाढो वैपी गानो आहे ऐं तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो. पोस्ट खे लाइक शेयर कयो पिया कोन कयो था

हो, आपके पास हो, क्या किसी के पास भी ना हो। और क्या कहते हैं फहीम ब्रेक, हाँ ठीक है टॉपिक पो मास सीएसएसजी तैयारी कंदम। वाह सादा कहती हैं आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है। अच्छा मेरे साथ ही मिली हो गानों तो हलाइना तवाजे लाए ठीक है। और रिहाना खान बकर शिमर सद मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं वालेकुम असलाम के साथ।

मुझे क्या बात है, गाना आपने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो हमने यहाँ पर सुना, और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के साथ बातें जो कि भाई जान हम करेंगे, लेकिन बातों के सिलसिले को जारी और सारी रखने के लिए एक और चीज भी होती है कि आप लोग भी हमारे साथ मौजूद रहने चाहिए। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो बताइए कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, और उसके अलावा पोस्ट को लाइक कर रही है नहीं।

बात है, बटर जवानी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है। अच्छा तो ये क्या कह रहे हैं, आज इंडिया के गाने चला रही है ना बाबा, ये सब पाकिस्तानी गाना है, चाहते तो अगर शादी के लिए अभी ये पोएट्री है, तकाजाए इश्क है मेरी आंखों की मस्ती का, खुला तो दीदार आपका, बंद फिर आपकी, वाह वाह वाह वाह डाडी भली शायरी हो। चाचा खालिद लिखते हैं कि उलझा के रख दिया है इस कश्मकश ने मुझको, वो फिर से आ बसी है मुझ में या मैं खो गया हूँ उसमें, वाह वाह वाह वाह। अच्छा हैप्पी कहती हैं आरजे आप इतने दिनों से 1 बजे वाला प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही थी, मैं आपका और आपके शो का इंतजार करती थी पर आपका शो रेडियो पर नहीं चल रहा था और इतने दिन से आपका प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो पा रही थी, आपका शो तो सुनती थी पर मैसेज नहीं करती थी, वो इसलिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था इसीलिए आपको मैसेज नहीं करती थी, सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वैसे शायद मैंने कल परसों नहीं किया था 1 बजे वाला प्रोग्राम, बाकी तो मैं करती हूँ। ओके जी, अब्दुल गफार रन हमारे साथ हैं, भाई वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें, आप भी खुश रहें और हमारे साथ रहें। सादे के दिन टॉपिक में 10 साल पीछे जाऊं तो मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रही होती। अच्छा मनाया गाल ये मेरी इतनी बुरी आदत है ना कसम से, जो मैं बात बात पे बोलती हूँ, अच्छा मनाया गाली

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular. Mitiye jo
5: madad laye tayar hain. प्राइमरी उस्तादन जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत बेन मुतालबन जी मंत्रालय पेट एलिफ जे सदे मुख्तलिफ शहरन में एहतियाजी मुजाहिरा नौशेरो फेरोज दादू कंदकोट नवाब शाह कुम ब्रियासी ए फनवाकिल बेन शहरन में एहतियाज कयो वियो अॻवाणनि जो चवण आहे त जायज मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतियाज जो दायरो वधायो वेंदो। मेहरापुर भरसां गोधो शाख में ॿ मासूम ॿार ॿुॾी विया आहिनि। हिकु जो लाश हथायो आहे, ॿिए जी ॻोल्हा जारी आहे। ॿुॾी वियल जनवरनि जे अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथायो आहे, सत वरनि जे अरहम आराई जी ॻोल्हा जारी आहे। वारसनि जो चवण आहे त ॿारड़ा शाख भरसां रांदि खेॾंदे ॿुॾी विया आहिनि। ॻोठाणनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुॾी वियल ॿारड़े जी ॻोल्हा जारी आहे। गढ़ी यासीन भरसां ॻोठ साले ईसाणीअ में मुड़ुस हथां ज़ाल क़तल। जवाबदार शादी खान ईसाणी पंहिंजी ज़ाल रहीमा खे बंदूक जा फायर करे क़तल कयो। मक़तूल औरत जो लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी। गोलियूं लॻल लाल डीसी कॉलोनी जे घर मां अहलकार लाश मिलियो आहे। इतलाउ ते पुलिस पहुची लाश वारसनि जो चवण आहे खीर वठण लाइ उथंदो आहे। खीर वारे ॿुधायो आहे त अॼु न उथियो आहे, जांच लाइ वियासीं त सदस लाश मिलियो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुनते रहो GAFM 91।
6: अक्सर मां साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 1.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: It's 2:50.

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya jo. By Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
5: GFM 91.6।
6: लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम वस्ते। अच्छा, तो आपके सदा के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे 888 फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ तरीके कहा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। तो बस आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, जल्दी से हमारे पेज आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे। कम बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जनाब, तो प्रोग्राम के हम दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं और आप लोगों से सवाल ये मुझे बता रहे हैं आपने ऐसा करना है, फर्ज कर लेना है अगर आप उठते हैं, नींद से उठते हैं, जागते हैं और आपको इस चीज का पता चलता है कि आप अपनी जिंदगी पानी जिंदगी से सफा पोते हली वो तो तहां अच्छा कंदा, यानी कि खोड़ माण्हू बिल्कुल इहो सोचींदा आहिनि त असां पंहिंजी ज़िंदगी खे वेस्ट करे छॾियो आहे। हाणे अगरि असांखे टाइम मिले, चांस मिले ज़िंदगी में पोइ ते मोटण जो त असां ही कमु कंदासीं, असां ही कमु कंदासीं। त खोड़ माण्हू उहा कहिड़ा हूंदा आहिनि जेके बिल्कुल ईअं चवंदा आहिनि त असांखे अगरि चांस मिली वञे या फिर तॾहिं चवंदा आहिनि त वक़्त जी क़दुर कयो, वक़्त जेका कॾहिं बि वापसि नाहे मोटी ईंदो। त उहा ई ॻाल्हि आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो अगरि तव्हां सां ईअं थी वञे त पोइ तव्हां छा फीडबैक सां सुठी ॻाल्हि हूंदी। मूंखे सभ खां पहिरियों जेको मैसेज मिलियो आहे उहो मिलियो आहे कश्मोर से अखलाक बलोच। हाय सिदरा, हाय चयू अखलाक भाई, बिल्कुल तव्हां जो गानो ॿुधो आहे सही आ रही है। उतक मौजूद था डॉक्टर कैप्टन मारिया शायद मारिया सुमरो है। ओके जी, आपने लिखा है गाना सो चले। अच्छा, ये गाने के बोल है सही सही, मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंद जो गानो हलाईंदासीं। और उनखां अलावा वालेकुम असलाम इन मोले इस्लाम अदद छा हाल आहिनि, उमेद त खुश सदा खुश हूंदा, आमीन आमीन। कसीदा ॿुधायो अब्दुल जबार मरी दरिया खान मरी हमारे साथ। भाई जान कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये हमारे साथ हैं जी डॉक्टर।

हसीना दोबारा से कहती है भेण असां के अरे तां जो को मैसेज हुंदो ना थोड़ो थोड़ो मुके समझ में ना इंदो अलाई छा लिखना है तो तां मैसेज को सिंधी में लिखी करे शेयर करना है पैनल ते अगर सिंधी में थोड़ो मैसेज इंदो ना तो वैसे ही थोड़ो हेडे ओडे थी वेंदो है सो थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु मौजूद आहे तव्हांजी मोहबतूं आहिनि और ये वालेकुम असलाम फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो है सदरा अच्छा गानो लिखियो अथव दीदी के डॉक्टर हसीना सुमरो साहिबा डॉक्टर कैप्टन मरियम कुरे जो साहिबा जे नाले चले ठीक है मां कोशिश कयां थी तव्हां भाइरनि जूं फरमाइशूं हलाईंदासीं सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूने जो हमारे साथी वालेकुम असलाम कहते सदरा मुस्कान साहिबा शो बेस्ट है जवाब गेप को पूरा करने के लिए 10 साल नींद ही नहीं करूंगा बैलेंस बराबर हो जाएगा 10 साल तां कीअं न सुम्हंदा बाबा कीअं न सुम्हंदा इमेजिन कयो की हिकड़ी रात तव्हां निंड न आयो कंदा कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके अच्छा निंड तां मूंखे हिकड़ी ॻाल्हि यादि आहे कुझु टाइम पहिरियों हिकड़ी न्यूज़ वायरल थी हुई त हिकिड़ो छोकिरो अकेलो रहंदो हो यानी की पंहिंजे फ्लेट ते त 3 ॾींहं गुज़री विया हुन जे अंदरि त हुनखे वेंदे माण्हू ॾिठो ठीकु आहे लेकिन 3 ॾींहं गुज़री विया हुनखे कंहिं ॿाहिरि ईंदे न ॾिठो हुन जा जेके पड़ोसी हुया जेके आस पास माण्हू हुआ परेशान थी विया त अॻिलो माण्हू अलाए कुझु थी न वियो आहे अंदरि ऐं दरवाज़ो बि न आहे खुलियो ॿाहिरि बि न आहे निकितो तॾहिं हुननि टीम खे घुरायो आहे पुलिस वग़ैरह आई आहे हुननि दर भॻो ऐं अंदरि वञा ॾिठाई त हू हमरा सुतो पियो आहे 3 ॾींहनि खां हू हमरा सुतो पियो हुयो समुझ में ॻाल्हि अचे थी 3 ॾींहं केरु माण्हू निंड करे सघे थो बाबा लेकिन हुन कयो बिल्कुलु या नेक्स्ट लेवल ते या न्यूज़ वई हुई ॾाढी फेमस थी हुई तव्हां बि शायदि ॾिठी हूंदी पर ईअं बि अथव अहिड़ा माण्हू बि अथव निंड मतिलबु ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे निंड अगरि हिकिड़े माण्हू जेको निंडी आहे न घणी हुनखे आदत हूंदी आहे त हू त बाबा हुनखे छॾे ॾियो 3 ॾींहं छा हू 10 ॾींहं बि लॻातार निंड करे ॾेखारींदव वरी कुझु अहिड़ा बि हूंदा जेके सफ़ा निंड न आहिनि कंदा असां सोचींदा बाबा तव्हांखे निंड नथी अचे ऐं हू चवंदा आहिनि न नथी अचे निंड कंदा कयो ज़रूरी आहे निंड असांजी बॉडी लाइ तमामु घणी ज़रूरी आहे अच्छा हिन तां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मूंखे यादि अची वई उहा थोरी देरि खां पोइ ॿुधाईंदी न त चवंदा हाणे सभु सदरा ॻाल्हियूं यादि अचनि मूंखे इलाही अलॻि अलॻि तव्हांखे लाइक शइ

बाद वो हमारे साथ मौजूद थे हमारे मीरज से कहते वी आई पी प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा चाचू लेकिन तो घर वाले बंद रखो दरवाजो अच्छा प्रेमचंद बोला अच्छा सिंह कुमारी वालेकुम असलाम में भी आतोनी मुदाहलाइन तानी

0: साले उन्हें जो तान जो कमा तान मारिया मारिया हमारी कहान चली जाती है रोज यहाँ
1: बना।
0: अच्छा रोज आया करे ना प्लीज, मुझे आपकी आदत लग गई, आपकी आवाज नहीं सुनती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अरे भाई मैं रोज ही तो आती हूँ बढ़िया करे ना आय सजा थी पे वैसे पंजे पंजे वाले प्रोग्राम तो मैं डेली करनी है यहाँ वैसे कल तो जुम्मा था कहानी था मतलब ता जो मैं मोकल भी न कर

दाड़ो भलो गानो और किशोर भाई ये चापटा भी तो हाँ ये तो अच्छी बात हुई ना तरी तो चवा मथी नंढड़ा भी थी नंढड़ा भी आए हाय ओके बिल्कुल बिल्कुल।

पाने की मतलब इन कहो ना तो अगलो मानो कोई भी अड़े किस्म चुला से तो डायरेक्ट उन्हें जो जैन तवा के तरफ हलो वने ये न क्यों बाबा ये न क्यों है तो कहती आज ही अगर 10 साल पीछे गई तो मैं 5 या 6 साल की होती क्योंकि अभी मेरी उम्र 15 साल है तो अगर मैं 10 साल पीछे चली जाती तो छोटी होती खेल रही होती घूम रही होती भैया तो सुठी गाल है न मिले बचपन मिले ताकि मिले तो

निकलता हम। अच्छा, काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। और चाचा, जिंदगी में कुछ चीजें जो होती है ना वो अच्छे के लिए होती हैं। अब वक्त गुजरता है तो आपको इन चीजों का अंदाजा हो चुका होगा। अगर मुझे ये लगता है कि जो लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, अगर वो यही सोच अपनी जिंदगी के अंदर अपना लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। तो ये फार्मूला आप ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, दर्दी दिल कहती है तुम एक दिन नहीं आते तो मुझे लगता है 7 या 8 दिनों से शो नहीं सुना। अच्छा, अब्दुल्ला अली हमारे साथ ही कहते हैं, सिद्रा की मुस्कान बड़ी खतरनाक है, जहाँ बैठ जाए वहाँ हंसी की दुकान है। ओके जी, अब्दुल्ला अली हमारे साथ हैं और अब्दुल्ला आपको वेलकम कहते हैं। अरे सादिया को हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सादिया, एंजॉय कीजिए। हाँ जी, क्या ही बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ जी गपशप है, और गपशप ये जो है ना पूरी पूरी 3 बजे तक जारी और सारी रहेगी। एरम कहती है हाय अल्लाह आप ही। हाँ बस क्या ही कर सकते हैं। अब्दुल जब्बार मरी हमारे साथ, यदि सिद्रा ओपो कयल गलतिन के सुधारे इंदर से। वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल या सोच अर्जन गुर्जी। और रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई हमारे साथ, अदी अच्छो असा के 10 साल पोई अज जतायूं, यही पोचंदा जी हाणी पोता।

0: बात है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करे और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जी, हम जा रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने, उसके बाद जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं रही हूँ जाकर यूँ वापस आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी के नाम बजते
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
2: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पा शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए, तें जो आसान जवाब यो आ ही बार भी असन वट अल्लाह ताला जी एक वडी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा ये बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगाना लाजमी आए।
1: अभी बुधो फिल्म जो आए।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना। मैं वैसे गाना सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, अच्छा गाना था। उनका अलावा जेको आज सो तमाम से मौजूद आए प्रोग्राम सुन रहे हैं, चलती का नमस्ते आगे से दराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं। और भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सखर मोरो मेरे खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं ना प्रोग्राम के लास्ट लिंक में। इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, मुझे लगा अभी मतलब एक लिंक खत्म हुआ है और ये लास्ट लिंक आ गया। चले जी, सो आपको वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा टॉपिक यही पूछा आप लोगों से कि आप मुझे बताएं, अगर आप फर्ज कर लीजिए कि आप सुबह उठते हैं जागते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी के 10 साल जो है वो पीछे चले गए हैं, तो आप क्या करें? कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये पता चल जाए कि 10 साल अपनी जिंदगी के जो है वो पीछे चले गए हैं और उनको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब यकीन जाने कि उनका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप अपना बताएं। खैर, और इसी के साथ साथ ये लिस्ट में है जो कि हम जाहिर सी बातें एंजॉय करेंगे। और सजाद अबासी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी, थैंक यू। ये तोड़ फोड़ मेरी चलती रहती है।

ओके जी साधिया साधिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और समाटो गोपा के सिदरा नाराजगी कमेंट शामिल ना कर जैसे मथे हुआ सब पढ़िया है अगर तुम नबुधा आए तो बाबा ने मुझे कड़ी गलती है वासु भाई हमारे साथ मौजूद है मुझे प्यारी भेण कड़ा हाल है खुश आयो सब अच्छा चंगी भली यस तुझो बुधा फहीम कहते असा तो टे बजे का सुम्मी सुमण जा आदि थी वया आयो अच्छा टे बजे का सही सही सही और ये वकील अहमद सिंधी हमारे साथ हैं विक्यू खास के लिए ओके फ्रॉम सैयद गुलाम हैदर शाह से बाजी आप कैसी हैं आपका शो बहुत अच्छा है बाजी माय फ्रेंड जमील खास के लिए और मुरीद बस इतना ही मैसेज है तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं

0: कंबर से सनाउला, एजाज हुसैन गोपांग, इनायतुल्ला गोपांग, गुल हसन गोपांग, किफायतुल्ला गोपांग, हुसैन अली गोपांग, रहमान अली गोपांग, चलें जी सबको वेलकम कहते हैं। उनके अलावा असर से गट मौजूद आए, दर्दे दिल कहती है मैं तो जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, जल्दी सुमण वारा जल्दी उठण वारा मानू डाढ़ा भला हूँ अच्छा। उनके अलावा न चाचा तव की नव हुयसि तव्हां की न हुयसि इहो कोई ॿियो हुयो ॿियो हुयो वास भई हिते अदी सिदरा देर में देर असां बि प्रोग्राम सुना
1: भी
0: हा फहीम बिल्कुल ॻाल्हि खे घुमाए फिराए कंदा आहियूं अॻिलो माण्हू समझे न

वाह साई वाह हलो गानो बदरतासी अलाए किथे सजा समझ में गाल नदी अच्छा एरन थैंक यू आप हमारे साथ नाना बिस्मिल्लाह नो आज चली मां कोशिश क्या थी अगर न हलियो सलियो वाली प्रोग्राम में कैसी सिद्रा जी कहां गायब है 78 मोरी से राजा हमीचंद है और राधो महल नवाब ड्राइवर प्लीज प्ले मुमताज मोलाई तू मनी मनी असा यार चले वैसे रिजवान साहब तो अपने कामों में मसरूफ है वो नहीं करेंगे भाई प्रोग्राम भले तां केड़ो भी चओ हम नहीं करेंगे मुझे बिल्कुल ये लगता है अच्छा ये मौजूद है अदी सिद्रा असाजा मैसेज कोन पया पढ़ो कावड़ा छा अब्दुल जब्बार न बाबा तां जो मैसेज पढ़ी छियो मु और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम आपका शो वेरी नाइस है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीब बुला थेबू हमारे साथ है वेलकम जी वेलकम सलाम वाले जुड़े जो अदील अबन कोरी इकबाल खालिक लाशारी एंड यू सो वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से ये कहते हैं बाजी सिद्रा आई लाइक योर वॉइस इज गुड जुलरी से उम्मीद अली उतरादी सलाम किशोर अजीज कुमार अजीज सुमर सोलंकी अंकल गफूर और आकिब शकूर लाशारी एंड यू प्ले शमन हेलो केडा मानू याद अथव असा कदे कदे पांजो नालो ही विसरी वेंदो

राजा फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो भाई तहां जो मोहब्बत हुआ तहां सुनो प्रोग्राम बुधो पया चाचा खालिद असां दे पैनल ते मौजूद आहे। मजाक करता हूं आपसे अपना समझ के। नहीं नहीं बिल्कुल मैं भी आपसे मजाक करती हूं, कोई बात नहीं है। पांजा पान में आयो, टेंशन न वठंदा कयो, मुझी टेंशन न कंदा कयो। और हक मौजूद मोला इस्लाम अदत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो से सगन मौजूद आए। डॉक्टर साहिबा तहां जो मोहब्बत हुआ तहां ओ हिदा सारा मैसेज करी छड्या है। गोट मोहम्मद तैयब थेबो का हबीबुल्लाह थेबो भा तहां जो भी मोहब्बत हुआ तहां भी वराए वराए मैसेज शेयर करी छड्या है।

0: बाजे।
1: अच्छा, दर्दें तो लगती हैं कि कुछ चीजों से मुझे नफरत है, जैसे कि नजरअंदाज करने के बाद दी गई तवज्जो से, सच जाने के बावजूद झूठ सुनने से, दुख के बाद दी गई खुशी से, दर्द देने के बाद माफी मांगने से, और तकलीफ के बाद दी गई मोहब्बत से। वाकई यो सबनीन के नतीजों का नफरत आई। बहुत सो मजाब हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। राशिद खोड़ो हमें सुन रहे हैं, कहते आज अच्छे मूड में है, वाय मुझे भलो मूड भी तांगे वाय
2: तो।
1: अच्छा अली मोहम्मद भाई, हेलो हेलो, हाँ हैप्पी, बिल्कुल सही करी, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी गुजर जाता है। वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी कह रहा

अच्छा हाँ, तोड़ फोड़ की टेंशन नहीं है, बाकी इहो आहे टेबल जे हेठां इलाही सारियूं तारियूं पयूं हूंदियूं त मूंखे इहो भोंदा करे करंट न्यूट्रल करणी आहे। सो ही लास्ट ट्रेक असां पंहिंजी लिस्ट में रखी छॾियो आहे जेको असां बिल्कुल इंजॉय कंदासीं। हदीक ख़ूबसूरत सां गाना

सो बिल्कुल हमारे जाने का वक्त आ चुका है तमाम खा वठूं था इजाजत वरी मिलूं था तमाम सा पंची बच्ची वाले प्रोग्राम में अच्छा जे ना ताई पोस्ट के लाइक और शेयर ना कयो करे वठो बाबा करे वठो दिसो लास्ट टाइम थी तमाम जल्दी कयो इन का पोई तमाम का मोकल वठूं था 5 बजे ज्वाइन कजो ई किथे का गलती थी उते माजरत कयूं था जना फीडबैक रेजी वया है ने कानाडा रेजी वया है सभी का माजरत सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap,
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप,
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

तस्वीर न कया वया तेजा जुदारो वधायो वेंदो। मेहरापुर भरसा गोधो शाख में बुडी विया आहिनि।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है
1: FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए एफएम की आवाज़।

0: AFM Network सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज। उदंदा रहो, उदंदा रहो।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची

0: सुनेंगे KTN News।
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: नंढा मुंतकिल कयो पियो वञे। वधीक बरसाति ऐं इम्कानी बोध सबबि मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमण चयो आहे त कराची जे मसलनि जे ज़िमेवार MQM आहे। हिक साज़िश तहत हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मकबूर सिद्दीकी जी हड़तालनि जी हिमायत वारियूं वीडियोज़ अॼु बि मीडिया वटि मौजूद आहिनि। हिक हिक हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खया वेंदा हुआ। शर्जीलनामे जी सियासत कंदड़ जमायतूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसला हल करण लाइ मुसबत ऐं ज़िमेवाराणी सियासत जी ज़रूरत आहे। पीपी हमेशा क़ौमी मुफ़ाद खे अवलियत ॾिनी आहे। सिंध जा माण्हू बाशौर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केर साणन गॾु बीहे थो। अवामी तहरीक जे सरबराह आज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला इंसाफ़ अमुन बराबरी रोज़गार तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकुमरानीअ जो हल सिंध जे विरांगे में ॻोल्हण बदिरां असल बीमारी ऐं वसीलनि जी फुरलुट खे ख़तम करणु घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तख़्तगाह हुकूमतनि जे सुधारनि खे सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी ख़िलाफ़ इस्तेमाल करण वारी हर कोशिश खे सिंध जो अवाम नाकाम बणाईंदो। तालीम खाते में बदलीन मुक़ररनि जे नाले ते थींदड़ करप्शन ते 4 सेक्शन आफिसरनि खे हटायो वियो। हटायल आफिसरनि में हसनैन अब्बासी, अली अकबर टगर, खालिक जमाली ऐं तारिक हुसैन शामिल। ट्रांसफर पॉलिसीअ खां सवाइ मनपसंद मुलाज़िमनि खे रिश्वत एवज़ पोस्टिंग ॾियण जा इल्ज़ाम। अली अकबर टगर खे तालीम खाते मां हटाइण जे हिकु ॾींहुं बाद आपाशी खाते में सेक्शन आफिसर मुक़ररु कयो वियो। तालीम वारे वज़ीर ई ट्रांसफर खां सवाइ मनपसंद मुक़ररिन ऐं मुबैना माली बेज़ाबतियुनि जी इंक्वायरी मुक़ररु करे छॾी। प्राइमरी उस्तादनि जे सर्विस स्ट्रक्चर समेत ॿियनि मुतालबनि जी मंटा लाइ पेटे अलिफ जे सते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। लाड़काणो, नौशेरो फेरोज़, दादू, कंतोन, नवाबशाह, कुम, ब्रियासती, पन्नो, आकिल ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज कयो वियो। अॻवाणनि जो चवण आहे त जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

मेहरापुर भरसां गोदो शाख में ब मासूम बार बुडी वया एक जो लाश हथ बे जी गोल्हा जारी है। बुडी वेल चैन वरन जे अब्दुल रहमान आराई जो लाश हथायो है। सत वरन जे अरहम आराई जी गोल्हा जारी है। वारस जो चवण है तो बारड़ा शाख भरसां रांद खेड़े बुडी वया गोठाणन पारा पैंजी मदद पाण ते बुडी वेल बारड़े जी गोल्हा जारी है।

0: मोती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज आवाज।
0: ये FM नेटवर्क सिंध की आवाज
2: जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर।

0: अगर अब्बू मुझे पैसे नहीं दे सकते, मुझे कुछ दे नहीं सकते, तो एटलीस्ट वो मेरी चीजें चोरी तो नहीं करें।
1: डरो।

आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा, नहीं चल सकता। माँ चला के आपका होना तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सौ उंगलियां उठाते।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज।
2: GAFM Network, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

गद्दार बणाए रहियो आहे। हालतुनि खां तंग थी माण्हू हथियार खणी जबलनि ते वञी वेठा आहिनि। आइन में सूबा ठाहिण जो तरीक़ो दर्ज आहे। आइन में 27 तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि, जंहिं जो मतिलब आहे त आइन में खामियूं मौजूद हुयूं। कराची वासी पाणी ख़रीद करे पी रहिया आहिनि। वज़ीरनि ऐं आफ़िसरनि जा टैंकर हली रहिया आहिनि। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह आसिफ़ अली जो चयो आहे त सिंध खे नओं सूबो न पर वसीला, इंसाफ़, अमन, बराबरी, रोज़गार, तालीम ऐं पाणी घुर्जे। ख़राब हुकमरानी जो हल सिंध जे इलाके में ॻोल्हण बदिरां असल बीमारी ऐं वसीलनि जी पुलुट खे ख़तम करणु घुर्जे। कराची सिंध जो तारीख़ी तख़्तगाह ऐं अणटुट

0: निकिरनि थियूं पयूं, छोकी एल एल बी जी डिग्री वठण खां पोइ असां मल्टी डायमेंशन्स में वञी सघूं था पिया। असां क्रिमिनल लॉयर थी सघूं था, असां सिविल लॉयर थी सघूं था, फैमिली लॉयर थी सघूं था, बैंकिंग लॉयर थी सघूं था, एनवायरमेंटल लॉयर थी सघूं था, इमिग्रेशन लॉयर थी सघूं था पिया। ऐं प्लस में इन्ही फील्ड में रही करे, इन्ही फील्ड में रही करे असां कॉर्पोरेटिव तरफ़ बि वञी सघूं था पिया, ऐं सुठा जजिस थी सघूं था, सुठा सरकारी वकील थी सघूं था, असिस्टेंट डायरेक्टर थी सघूं था, इन्ही पोस्ट से असिस्टेंट लीगल इंस्पेक्टर थी सघूं था। इलाही आहिनि, स्कोप जन जो इलाही वॾो आहे, त हे बेसिकली देट इज़ अ अम्ब्रेला, उन अम्ब्रेला जे अंडर सभु कुझु अचे थो पियो। स्कोप इन जो वास्ट आहे।
1: अच्छा जी, तव्हां चयो त ही मौक़ा मिलनि पिया, इलाही सारा तव्हां स्कोप बि ॿुधाए चुका, त छा जेको आहे त जस्ट एडवोकेट बणजण लाइ असांखे लॉ पढ़णु घुर्जे, या ईअं जनरली माण्हू जेको आहे त, छाकाणि त हिन में सब्जेक्ट्स उहे हूंदा आहिनि जेके पाकिस्तान जो लॉ आहे, कॉन्स्टिट्यूशन आहे, एज़ वेल एज़ पीपीसी, सीआरपीसी, त इहो आम माण्हू खे बि ख़बर हुजणु घुर्जे, या जस्ट जेके एडवोकेसी सां वाबस्ता थियणु चाहिनि पिया उहे जस्ट हिन तरफ़ अचनि।
0: मुंहिंजी सभिनि खां ईअं सम्झो त हिकड़ी ख़्वाहिश आहे, मां इलाही इंस्टीट्यूशन्स में वञी करे पार्ट टाइम लेक्चर्स बि ॾिना पॉइंट्स ते, मूंखे इलाही दोस्तनि जी तरफ़ां ऑफर बि आई कि सर असां एजुकेशन सां तालुक़ु रखूं था, कंसर्न स्कूल सां तालुक़ु रखूं था, असां चाहियूं था त ॿारनि ताईं बि लॉ जी इहो इंफॉर्मेशन वञे।
1: जी,
0: इन सां रिलेटेड इलाही केतिरा मूंखे ऑफर्स मिली वियूं, साईं तव्हां चओ था सेशन्स कंडक्ट कयो।
1: सही,
0: सो मां त इहो चवंदुमि त मुंहिंजी दिली ख़्वाहिश आहे कि लॉ जी जनरल स्टडी, लॉ जी नो हाउ जो सब्जेक्ट असांजे करिकुलम में एड कयो वञे,
1: त
0: जीअं असांजे ॿारनि खे जनरल स्टडी खां अलावा बि लॉ जी स्टडी ख़बर हुजे, हुनखे पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन जी ख़बर हुजे, हुनखे पंहिंजे बेसिक राइट्स जी ख़बर हुजे, उन्हनि खे माशरे में थींदड़ जेके बि प्रॉब्लम्स थियनि था पिया, जेके लॉ सां एसोशिएटेड आहिनि, मिसाल क्राइम सां एसोशिएटेड आहिनि, सिविल सां एसोशिएटेड आहिनि, फैमिली सां एसोशिएटेड आहिनि, एग्रीकल्चर लैंड सां एसोशिएटेड आहिनि, बैंकिंग सेक्टर सां एसोशिएटेड जेके प्रॉब्लम्स आहिनि, उनखे कीअं रिज़ोल्व कजे, उनजी उन्हनि खे सिर्फ़ नॉलेज हुजे, त जीअं हू बेसिक नॉलेज जे बुनियाद ते पंहिंजो जेको बेसिक राइट आहे उहो वठी सघे।
1: मतलब लॉ जेको आहे त इहे सब्जेक्ट तौर हुननि खे ॾिसणु घुर्जे, न सिर्फ़ सब्जेक्ट तौर बल्कि जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त बेसिक जेके आहिनि राइट्स जे बारे में हर ॿार खे, छा हर यंगस्टर खे एंड हर सिटीज़न खे ख़बर हुजणु घुर्जे।
0: बेसिक राइट सिर्फ़ मां ईअं न एल एल बी डिग्री लाइ वॾी आहे, सब्जेक्ट्स आहिनि, पर करिकुलम जो हिसो ईअं हुजनि खे त बेसिक लॉ जे बारे में हुननि खे ख़बर हुजे, बेसिक राइट्स हुननि खे पंहिंजा ख़बर हुजनि, की अगरि मूंसां कोई इशू थी थो वञे, मुंहिंजी फैमिली सां कोई इशू थी थो वञे, त मां हुनखे सॉर्ट आउट कीअं करायां बिफोर अप्रोचिंग सम कंसर्न एडवोकेट।
1: ऑलराइट,
0: मूंखे त ख़बर हुजे मुंहिंजे लॉ जी, दैट्स द रीज़न मां इहो हिकड़ी ख़्वाहिश आहे, मे बी हिन ते बिग थिंकर्स वेठा हुजनि, हुन ते सोचंदा हुजनि, इन पॉलिसी ते ॻाल्हाईंदा हुजनि, की असांजे ॿार खे, असांजे नौजवाननि खे हिन जी बि इंफॉर्मेशन हुन, हिन जे बारे में, लॉ जे बारे में बि इंफॉर्मेशन हुजे,
1: बिल्कुल
0: हुनखे तकलीफ़ न थिए अॻिते हली।
1: सही था चओ सर, असां अचूं पिया हिन तरफ़ एल एल बी जी तरफ़, जेके असांजा नौजवान आहिनि, स्पेशली स्टूडेंट्स आहिनि जेके आफ्टर द इंटरमीडिएट एल एल बी के जेको आहे त करणु चाहिनि पिया, हुन जे लाइ कहिड़ी एलिजिबिलिटी आहे?
0: ॾिसो, तव्हां उहो ई सवाल कयो
1: जी,
0: असां वटि कॉन्सेप्ट ठहियल आहे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग,
1: साइंस,
0: कंप्यूटर, हर क़िस्म जी फील्ड जो कॉन्सेप्ट ठहियल आहे, असां वटि लॉ जो कॉन्सेप्ट न आहे ठहियल।
1: अच्छा,
0: अगरि ॿार खे फर्स्ट ईयर इंटर लेवल ते ई अगरि असां अहिड़ो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए सघूं बेसिक जनरल लॉ जो, त ॿार खे उते ई हुनजी ग्रूमिंग थी वेंदी की आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, आई
1: वॉन्ट
0: टू बिकम एडवोकेट। ॾिसो, जीअं असां प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स जी तरफ़ सां लिया, त अॼुकल्ह जेको आहे न फील्ड्स वास्ट थींदी,
1: यस,
0: माज़र सां, सो बेसिक नॉलेज जे पर्पज़ सां छा थींदो, त हुन में हिकिड़ो इंट्रेस्ट क्रिएट थींदो, हिकिड़ो इंट्रेस्ट पैदा थींदो की मां बि वकील थींदो। सो असां वटि इहो आहे त प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग पढ़ण खां पोइ असां डिसाइड कंदा आहियूं की वञणो काॾे आहे,
1: केॾांहुं वञणो। ओके,
0: हाणे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इहे बि तमामु सुठी फील्ड्स आहिनि, हुन में स्कोप सुठो आहे, असांजे दुनिया, असांजे मुल्क खे इन शयुनि जी ज़रूरत बि आहे, आई टी सेक्टर में बि असांखे ज़रूरत आहे, असांखे बिज़नेस सेक्टर में बि हिननि जी ज़रूरत आहे, असांखे हिन खे इकनॉमिक जेके छा चवंदा आहिनि या कॉमर्स, कॉमर्स में बि असांखे ज़रूरत आहे, त मतिलबु असांखे हर क़िस्म जी फील्ड में असांखे नौजवाननि जी ज़रूरत आहे, त उन नौजवाननि सां गॾु हिकिड़ो वकील बि आहे, हर फील्ड में वकील बि हुजणु खपे, की जीअं असांजे मुल्क में जेतिरा बि सलाह सां रिलेटेड जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि खे बहितर तरीक़े सां सॉर्ट आउट करे सघूं ऐं जेके बि असांजा लीगल राइट्स आहिनि असां उहे अचीव करे सघूं.
1: ओके, मतिलब तव्हां इहो था चओ त स्टार्टिंग में जेको आहे त काउंसलिंग थिए करियर जे लाइ, त जीअं इंटरमीडिएट खां बाद में असांजा जेके आहिनि स्टूडेंट्स उहे कंफ्यूज़ न हुजनि त केॾांहुं वञिणो आहे. ठीकु आहे. अच्छा सर, एल एल बी जी तरफ़ा असां अचूं पिया, जेका अॼुकल्ह नाओ डेज़ मुंहिंजे घर में 4 ईयर्स प्रोग्राम थी वियो आहे, पहिरियां 5 ईयर्स हुयो, त इन जे लाइ कहिड़ी एलिजिबिलिटी आहे? इंटरमीडिएट लाज़मी हुजणु घुर्जे, जीअं मूं ॻाल्हि कई त इंटरमीडिएट बि उन में कहिड़ा जेके आहिनि त डिवीज़न या कहिड़ो ग्रेड हुजणु घुर्जे, इहो बि तव्हां असांजे व्यूअर्स खे ॿुधायो, एज वेल एज एज लिमिट छा आहे, एल एल बी केरु करे सघे थो केरु नथो करे सघे, ऐं स्टार्टिंग में जेको आहे त एंट्री टेस्ट जीअं लेट आहे, इहा बि तव्हां असांजे सामने खे ॿुधाईंदा प्लीज़.
0: ला एडमिशन टेस्ट बेसिकली पहिरों डोर आहे एडमिशन वठण जो. एच एस सी हिकड़ी पॉलिसीज़ जेको आहे न अडॉप्ट करे छॾियूं आहिनि, हुनजो सोल पर्पज़ इहो आहे की जीअं प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जे लाइ असां यूनिवर्सिटी जे लाइ काई बि
1: यूनिवर्सिटी
0: कंसर्न यूनिवर्सिटी, असां इलाही यूनिवर्सिटी आहिनि पाकिस्तान में, हुननि जी असां हिकड़ी एंट्री टेस्ट ॾींदा
1: आहियूं
0: की असां कंसर्न डिपार्टमेंट में वञणु चाहियूं था, सोशियोलॉजी में वञणु चाहियूं था, इंटरनेशनल रिलेशन में वञणु चाहियूं था, कंप्यूटर साइंस में वञणु चाहियूं था. त ईअं ई असां जॾहिं लॉ में एडमिशन वठंदा आहियूं त असांखे हिन एंट्री टेस्ट जे प्रोसेस खां गुज़रणो पवंदो. ऐं जी स्टार्टिंग आहे इंटर क्राइटेरिया, हिन जो
1: इंटर
0: स्पेसिफिक मार्क्स आहिनि, सपोज 50 मार्कूं
1: आहिनि. यस,
0: अगरि कोई 50 जे क्राइटेरिया खे टच कंदो त ही विल बी एलिजिबल. बाक़ी रहियो सीट वठण जो, जेतिरी परसेंटेज वधीक हूंदी, जेतिरी मार्क्स वधीक हूंदियूं, परसेंटेज सुठो ठहंदो, ईअं सीट मिलण जा चांसिस मिली वेंदा. अगरि माण्हू बहितर खां बहितर यूनिवर्सिटी में वञणु चाहे थो त हुनखे उहो क्राइटेरिया बि ओतिरो माइल स्टोन बि ओतिरो वठी माना अटेन करणो पवंदो की मां हिन सुठी यूनिवर्सिटी में लॉ एडमिशन जे थ्रू टेस्ट वठी सघां.
1: ओके, अच्छा ही त तव्हां ॻाल्हि खे इंटरमीडिएट जो क्लियर करे पियो, छा हिन में एज लिमिट बि आहे?
0: बाबा एज लिमिट न रखी अथनि, क्राइटेरिया एंटर ई आहे.
1: ठीकु आहे,
0: तव्हां इंटर बेसिस ते अप्लाई करे छॾो, तव्हांजी एडमिशन थी वेंदी.
1: ओके,
0: एडमिशन खां पोइ तव्हां पंहिंजी डिग्री खे परस्यू कयो, छोकी प्राइवेट डिग्री आहे, तव्हां परस्यू करे सघो था पिया.
1: ठीकु आहे. ऐं सर, अमूमन इहे सवाल ईंदा आहिनि त स्पेशली जंहिंजी काउंसलिंग न हूंदी आहे करियर जी, त उन्हनि जा इहे ज़हन में सवाल हूंदा आहिनि त असां इंटरमीडिएट खां बाद में अगरि लेट सपोज एल एल बी कयूं था त छा हुन लाइ असांखे वरी ॿी ग्रेजुएशन बि करणी पवंदी या इहा इनफ आहे एल एल बी सां गॾु गॾु ॿियनि कैरियर्स में वञण?
0: मां वंस अगेन वधीक उन शइ खे रिपीट थो कयां की ॾिसो, अगरि असांजी काउंसलिंग थियल हूंदी,
1: यस,
0: कैरियर काउंसलिंग जेके चवंदा, स्कूल लेवल ते बहितर आहे, स्कूल लेवल ते हिकिड़ो कैरियर काउंसिल ज़रूरु हुजे.
1: ओके,
0: ऑफिशियल हुजे, गवर्नमेंट खां अपॉइंट थियल हुजे, हुनजी हिकड़ी डिग्री हुजे, हुनजो सोल पर्पज़ इहो हुजे की ॿार जीअं फर्स्ट ईयर इंटर में या मैट्रिक में अचे त हुनजी कैरियर काउंसलिंग करे, छोकी मैट्रिक खां पोइ ॿार जो दिमाग़ ठहणु शुरू थी वेंदो आहे, वॉट आई वॉन्ट टू बिकम. उहो इंस्पायर थींदो आहे एनवायरमेंट खां. सपोज़ अगरि हुनजे घर में सभु डॉक्टर आहिनि त ही वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. ठीकु आहे, अगरि हुनजे घर में इंजीनियर आहिनि त हुनजो फोकस, हुनजो लाड़ो, हुनजो टिल्टेशन काॾे हूंदो इंजीनियरिंग तरफ़. ईअं अगरि हुनजे घर में बैरोक्रेट आहिनि त जेको लाड़ो हूंदो उहो बैरोक्रेसी ॾे हूंदो. सपोज इहो त थियो टू मूव विथ अ वे, टू मूव विथ अ विंड. हाणे ॿार जी पंहिंजी मेंटल अप्रोच छा आहे, ॿार पंहिंजी कैरियर काउंसलिंग लाइ काॾे वञण थो चाहे, छा उहो ॿिए जे ओपिनियन खे खणी करे पंहिंजो ओपिनियन सम्झी करे अॻिते मूव करणु थो चाहे. लाज़मी न आहे त अगरि घर में 10 बैरोक्रेट आहिनि त अॻिलो बि बैरोक्रेट थिए, थी सघे थो सुठो डॉक्टर थियण थो चाहे, थी सघे थो सुठो इंजीनियर थियण थो चाहे.
1: इहो आइडेंटिफाई केरु करे, हुन जा पेरेंट्स करनि या हू पाण जेको आहे त
0: ॿार, ॿार जी मां चयुमि न कॉलेज में स्कूल में
1: काउंसलिंग
0: काउंसलिंग, छोकी ॿार जेसिताईं पंहिंजी विल न ॿुधाईंदो, तव्हां अगरि पंहिंजी सपोज खे हिकड़ी मशहूर मूवी आहे 3 इडियट्स
1: सभिनी
0: ॾिठी हूंदी, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बाबा ॿार जी अॻिते हली करे इंटेंशन न आहे, ख़्वाहिश ई न आहे इंजीनियर बणण जी. तव्हां अगरि हुनजे मथां उहा सोच विझंदो त ही विल बिकम कंफ्यूज़, जॾहिं उहो कंफ्यूज़ थी वेंदो त उहो पंहिंजी सॼे केरियर खे बर्डन खणी हलंदो.
1: यस यस,
0: अगरि सपोज उहो ई शख्स हिकिड़ो बहितरीन फोटोग्राफर थियण थो चाहे, तव्हां छा कंदो, रोकींदो? जीअं हाणे सपोज तव्हां आहियो, मां तव्हांजो मिसाल वठां, त तव्हां FM जे फील्ड में तव्हां अची वियो, लाज़मी तव्हां कुझु विजन सोचियो हूंदो न. अॼु FM जी फील्ड खां निकिरी करे तव्हां पॉडकास्ट जी लाइफ में आया आहियो, सुभाणे अॻिते सुठा एंकर पर्सन थी सघो था
1: पिया.
0: इट मीन्स तव्हां पंहिंजे केरियर सां हिकड़े थ्रू आउट हलो था पिया, तव्हां विजन क्लियर आहे त मूंखे मीडिया जी फील्ड में अॻिते निकिरणो आहे. ईअं अगरि ॿार जी कवर कैरियर काउंसलिंग थींदी रहंदी त उहो डायरेक्ट हेॾे होॾे वञण जे बजाए सिधो ई पंहिंजे एम खे सिलेक्ट करे हिन फील्ड में अची वेंदा।
1: देट्स मीन पहिरां जेको आहे न डिसाइड करणु घुर्जे त कैरियर कहिड़ो असांखे सिलेक्ट करणु घुरिजे, छाकाणि त तव्हां पहिरां बि ॾिठो हूंदो, हाणे कुझु अवेयरनेस आई आहे न त पहिरां ईअं हूंदो यार हीउ डिग्री बि करे था वठूं, हली आट साइड ते हीउ डिग्री बि थींदी कमु ईंदी, पोइ एॾियूं डिग्रीज़ थी वेंदियूं आहिनि जो माण्हू पाण कन्फ्यूज़ हूंदो आहे यार आया वञिणो केॾे आहे पाण खे।
0: लैक ऑफ रिसोर्सिस,
1: यस यस यस,
0: लैक ऑफ रिसोर्सिस, अनएम्प्लॉयमेंट,
1: ठीकु आहे
0: ठीकु आहे, त लाज़मी जे माशरे में असां हलूं था पिया त हुते हिन शयुनि जी थोरी कमी बि आहे। हुन खे कवर अप करण जे लाइ लाज़मी माण्हू हथ पेर हणंदो आहे। सपोज़ अगरि कंहिं बी ए में डिग्री करे छॾी, बी ए में डिग्री करण खां पोइ माना हुनखे पंहिंजो स्कोप नज़र नथो अचे, त चवंदो अगरि मुंहिंजो वकालत में स्कोप सुठो आहे, मां कॉम्पिटेंट बि आहियां, मां होशियार बि आहियां, अगरि मां वकालत जी डिग्री वठां थो ऐं हुन में पंहिंजे पोटेंशियल खे यूज़ थो कयां पियो, त उहो अॻिते निकिरी सघे थो। ऐं उर्दू में हिकड़ी मशहूर कहावत आहे न कि जब उठो तब सवेर आहे, कि अगरि मिसाल कंहिंखे लेट आवर्स में बि या ॿिनि या टिनि या चइनि सालनि खां पोइ बि अगरि हुनखे इहा शइ महसूस थी थिए कि मां हिते केरियर नथो ठाहे सघां, त उहो पंहिंजे डिज़ायर केरियर खे स्विच करे सघे थो। हालत अगरि सपोज़ उहो चार साल किथे बी ए जी डिग्री वठे थो या ॿ साल प्राइवेट में किथे बी ए जी डिग्री करे थो, नाउ ही थिंक्स दैट आई एम नॉट फिट फॉर हियर, कॉन्फिडेंस आहे, मां वोकल आहियां ऐं मुंहिंजे अंदरि गट्स बि आहिनि, मुंहिंजी ड्राफ्टिंग सुठी आहे ऐं मां अॻिते पंहिंजो केरियर ठाहे सघां थो पियो, मां पंहिंजी बेसिक नेसेसिटीज़ ऐं बेसिक राइट्स लाइ कंहिंसां विढ़ी बि सघां थो ऐं हक़ वठी बि सघां थो। अगरि उहो सोचे थो त मुंहिंजो केरियर वकालत में सुठो आहे, मां कंहिंजे अंडर में नथो रहणु चाहियां, त ही चूज़ द फील्ड ऑफ द एडवोकेसी, अगरि चाहे त होॾे अची सघे थो पियो। अगरि उहो शख़्स पंहिंजे लाइ, पंहिंजे माशरे जे लाइ, सोसाइटी जे लाइ अगरि बहितर सोचे थो पियो त डिसाइड कंदा आहिनि ऐं अची वेंदा
1: आहिनि। जेका आहे तव्हांखे कमु ईंदी ई ईंदी हमेशह, ईअं चई सघूं था खणी,
0: बिल्कुलु चई
1: सघां था। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त अगरि बीए थियल आहे हुनमें सम्झे वियो कुझु बि न आहे त हुनखे जेको आहे हिन तरफ़ उहो अची सघे पियो। ऑलराइट सर, लेट जी तरफ़ अचूं पिया, पहिरियों स्टेप इहो ई आहे अगरि मिसाल एल एल बी करणी आहे त लेट जी तरफ़ अचणो पवे पियो। तव्हां ॿुधायो इंटरमीडिएट हुजे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हेक जी तरफ़ां 50% ताईं तव्हांजी इंटरमीडिएट क्लियर हुजे। सर, जेको अटेम्प थिए पियो केतिरो ड्यूरेशन आहे, केतिरे महीने खां बाद में थींदो आहे, ऐं मिसाल जेके स्टूडेंट्स इहो अटेम्प क्लियर नथा करे सघनि, लेट जो टेस्ट क्लियर नथा करे सघनि लॉ एडमिशन टेस्ट, हुननि जे लाइ केतिरा जेके आहिनि चांसिस आहिनि हिन टेस्ट जे लाइ?
0: हाणे रिसेंटली पहिरियों त 5 हुया, हाणे रिसेंटली हुननि 7 अटेम्प कया, कि तव्हां 7 अटेम्प ताईं जेको आहे न लेट क्लियर करे कंहिं बि यूनिवर्सिटी ऐं प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन वठी सघो था फॉर द फील्ड ऑफ एडवोकेसी।
1: ओके,
0: हाणे पहिरियों 5 साल डिग्री हुई, हाणे हुननि जेको नोटिफिकेशन कढी करे एच एस के 4 साल जी डिग्री
1: 4 साल करे छॾियो,
0: हिकिड़ो साल घटि करे छॾियो।
1: ओके, ऐं लेट जे लाइ सर केतिरे महीननि में जेको आहे अप्लाई करणो पवंदो आहे? इहो
0: पूरे साल में एच एस सी वटि शेड्यूल ठहियल आहे, पूरे साल में या 4 दफ़ा ईंदी आहे या 3 दफ़ा ईंदी आहे, 3 मंथ जे डिफरेंस सां लेट नौसी वेंदी आहे।
1: अच्छा, हुनजो प्रोसेस तव्हां ॿुधाए सघो पिया कीअं आहे त हुनखे कीअं अप्लाई करे सघे थो?
0: इंटर बेसिस ते एच एस सी में फॉर्म ईंदो आहे पोर्टल ते,
1: ऑनलाइन
0: तव्हां फॉर्म भरंदो, तव्हां खां पर्टिकुलर्स घुरंदा, पर्टिकुलर सबमिट थियण खां पोइ जॾहिं जीअं तव्हांजी टेस्ट वेझो ईंदी त हिकिड़ो नोटिफिकेशन ईंदो, मैसेज जे थ्रू अची सघे थो, मेल जे थ्रू अची सघे थो, या फोन ते तव्हांखे इन्फॉर्म कंदा, तव्हां पंहिंजा फॉर्म प्रिंट कराए छॾो ऐं स्पेसिफिक डेट ते तव्हांजी लेट जी टेस्ट आहे अपीयर थियो, 50 मार्क्स खणो ऐं एलिजिबल थी वञो कंहिं बि यूनिवर्सिटी लाइ, जीअं तव्हां एल एल बी डिग्री खे परस्यू करे सघो।
1: ऐं सर, जेके लॉ लेट जी तयारी कनि था ऐं काफ़ी सारा तव्हांजा स्टूडेंट्स बि आहिनि जेके तव्हां खां गाइडलाइन वठंदा आहिनि त लेट कीअं करणु घुर्जे, फॉर्मेट तव्हां असांजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदा त इहो टेस्ट जो पैटर्न कहिड़ो हूंदो आहे?
0: बाबा, लेट जो पैटर्न इहो आहे कि पहिरियों ईंदो पर्सनल स्टेटमेंट, 100 मार्क्स जा क्वेश्चन हूंदा आहिनि, तव्हांजी पर्सनल स्टेटमेंट हूंदी आहे। पर्सनल स्टेटमेंट में इहो हूंदो आहे कि वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, तव्हां वकील छो था थियणु चाहियो, उन में तव्हां पंहिंजे लाइ ॿुधाईंदा, पंहिंजो एम ॿुधाईंदा, पर्पस ॿुधाईंदा, उहो पर्पस लिखणो हूंदो आहे। जीअं असां नंढे हूंदे पंहिंजे अगरि शॉर्ट एसे कंदा हुआसीं स्कूलिंग में त पोइ हुते लिखंदा मां एम ऑफ लाइफ, उन खे असां चवंदा हिते पर्सनल स्टेटमेंट।
1: ओके, मतिलब पर्सनल स्टेटमेंट कंहिं बि टॉपिक ते ईंदी आहे,
0: पंहिंजी राय ॾियणी हूंदी।
1: ओके ओके ओके,
0: ॿियो तव्हांजो त शॉर्ट एसेस।
1: ओके,
0: शॉर्ट एसेस 15-16 शॉर्ट एसेस जेके करंट अफेयर सां, तव्हांजो एनर्जी क्राइसिस थी वियो, तव्हांजो करप्शन ते थी वियो, तव्हांजो डेमोक्रेसी ते थी वियो, डिक्टेटरशिप ते थी वियो, तव्हांजो वाटर क्राइसिस ते थी वियो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ते थी वियो, जेकी सोसाइटी में थींदड़ जेके बि नंढा वॾा इशूज़ हलनि था पिया, जेके सोशल इशूज़ चवंदा
1: आहिनि,
0: जेको आहे न तव्हांखे 4-500 वर्ड जेके हूंदी आहे, जेके में तव्हांजी इंग्लिश,

0: घटनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
1: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हुजे तहफुज जदीद सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी
2: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामूं
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंजूर थियल
2: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज जा
1: ऐं कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ऐं 600 गज
2: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलियतूं
1: साफ मिठो पाणी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सबका वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
2: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब
2: क्या आप अपना
3: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

0: कॾहिं को ॿार कहिड़ी डिस्ट्रिक्ट मां ईंदो, को कहिड़ी नेचर खणी ईंदो, कंहिंजी कहिड़ी तबियत हूंदी, कहिड़ो जो बिहेवियर छा हूंदो, माना हिकड़े क़िस्म जी हिकड़ी बहितरीन ग्रूमिंग थींदी ॿार जी। बुरे जी ख़बर पइजी वेंदसि, सुठे जी ख़बर पइजी वेंदसि, बोल्डनेस क्रिएट थी वेंदसि, इंडिपेंडेंट थियण शुरू थी वेंदो, ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठण शुरू कंदो, ज़िंदगी में अकेलो रहण बि शुरू कंदो,
1: सही
0: लोनलीनेस बि हुनखे फील थींदी, टाइमली डिसीशन बि हुनखे वठण ईंदा, पंहिंजे प्रॉब्लम्स खे सॉर्ट आउट करण जा बि हुनखे मिलंदा। जॾहिं अॻिते हली करे लीड कंदो त हुनमें लीडरशिप क्वालिटी बि पैदा थींदी। त यूनिवर्सिटी तव्हांखे बेसिकली हिकिड़ो फुल ज़िंदगी में जेतिरी बि तव्हांखे अलाह हयाती ॾींदा पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदव, त उहा यूनिवर्सिटी जॾहिं तव्हांखे दोस्ती मिलंदी त हर क़िस्म जो दोस्त मिलंदो, जेको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड थी वेंदो, दुनिया में स्प्रेड थींदो, सुभाणे उहो ई तव्हांजे कमु अची वेंदो।
1: मतिलब तव्हां यूनिवर्सिटी चवंदा,
0: यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगरि मिसाल न बि
1: साइड कयो, छाकाणि त अक्सर स्टूडेंट जो इहो ख़्याल हूंदो आहे त असां कॉलेज साइड कयूं था त असां रेगुलर क्लासिस
0: कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छा आहे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्राइटेरिया साॻियो ई आहे, हुते बि टेस्ट आहिनि, हुते बि असाइनमेंट्स आहिनि, हुते बि सेमेस्टर्स आहिनि, हुते बि मार्क्स टेस्ट जे हिसाब ॾिनी वेंदियूं आहिनि, टेस्ट जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि, प्रेज़ेंटेशन जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि, ऐं अटेंडेंस जे हिसाब सां ॾिनी वेंदियूं आहिनि। ठीकु, हुन खां अलावा रेगुलर अचण सां छा थींदो आहे की जॾहिं तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में ईंदो न, तव्हां कोई बि सब्जेक्ट तव्हां खां मिस न थींदो।
1: सही था चओ,
0: चइनि सालनि जे कैरियर में तव्हां सिलो सिलो हिकु सब्जेक्ट, ॿ सब्जेक्ट, टे सब्जेक्ट तव्हां वाक़िफ़ थींदा ईंदो सब्जेक्ट सां। जॾहिं तव्हां वाक़िफ़ थींदा ईंदो त तव्हांजे साम्हूं अपॉर्चुनिटी

0: इन उन्हनि जा फील्ड ई स्विच करे छॾी चवनि यार असांखे करणी कोन्हे कहिड़ी उन्हनि जूं अहिड़ियूं कॉमन मिस्टेक्स आहिनि जी वजह सां उन्हनि खे इहो स्टेप करणो
1: कुझु जूनियर या कुझु जेके लाइसेंस वठण खां पोइ वेट कंदा असां वटि केस अचे तव्हां स्टडी मां पंहिंजे सीनियरनि खां सिखियो त अगरि मिसाल सपोज जेसि ताईं केस अचे तव्हां स्टडी त कयो न तव्हां जजमेंट्स पढ़ो तव्हां अथॉरिटीज़ पढ़ो तव्हां जेकी ऑफिस में फाइल पई आहे त हुनखे पढ़ो ठीकु आहे मेजर एक्ट्स पिया आहिनि क्रिमिनल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि सिविल बेयर एक्ट्स पिया आहिनि हर क़िस्म जो लॉ पियो आहे त हुन ते स्टडी कंदा रहियो जॾहिं स्टडी न हूंदी तव्हांखे प्रोसीजर वर्क जो ख़बर न हूंदो त ऑटोमेटिकली डेफिनेटली तव्हां मायूस थींदो जेकॾहिं तव्हांखे प्रोसीजर ख़बर हूंदो वर्क ख़बर हूंदो लॉ ख़बर हूंदी तव्हांखे ऑटोमेटिक कंहिंखे सुठी एडवाइस कयो था इन्वेस्टमेंट छा आहे वकालत में पहिरीं इन्वेस्टमेंट आहे इन्वेस्टमेंट आहे तव्हांजी एडवाइस अगरि तव्हां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियणु शुरू था करे छॾियो तव्हां कॉन्फिडेंस बिल्ड था कयो तव्हांजी इन्वेस्टमेंट इहा ई आहे टाइम जेको तव्हां ॾियो था तव्हांजी लोकेलिटी में मिसाल सपोज कुझु आहे बाबर मुंहिंजो हे इशू आहे मूंखे एडवाइस खपे बाबर खे पाण ई ख़बर न हूंदी त एडवाइस काॾो ॾींदो बाबर खे हुन जे लाइ पढ़णो पवंदो बाबर खे स्टडी करणी पवंदी सपोज असां लीगल कॉर्नर ऐं पॉडकास्ट असां शुरू कयो आहे हिन में असां इम्पार्ट छा था कयूं एडवाइस इम्पार्ट छा था कयूं नॉलेज नॉलेज काॾो थी अचे किताबनि में आहे
0: न स्टडी करणी
1: ठीकु आहे उन खां पोइ जेको पाण जनरल डिस्कशन कयूं था काॾो था कयूं प्रैक्टिकल वर्क त प्रैक्टिकल वर्क असां हुते सिखूं था पिया स्टडी असां किताबनि में कयूं था पोइ असां हिकिड़ो पूरो पैकेज था थी वञूं था अगरि असां कंहिंखे सुठी एडवाइस ॾियूं था त डेफिनेटली हो चार माण्हुनि खे थो ॿुधाए चार अठनि खे था ॿुधाइनि अठ सोरहं खे था ॿुधाइनि कीअं तव्हांजी क्लाइंटेशन
0: वधंदी
1: लॉयर हू नोस थिंग्स सो देट इज़ जेको इनिशियल स्टार्टिंग में जेकी थिए थी की लैक ऑफ स्टडी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आहे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नाहे ऐं मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयरनेस नाहे केस लॉस कीअं सर्च करनि हुनजी नो हाउ नाहे ठीकु आहे सिर्फ़ फाइल खणी करे कोर्ट ताईं पुॼणु ई वकालत नाहे हुन केस खे हलाइणो बि आहे हुन केस खे खटणो बि आहे अगरि मिसालनि सां न बि खटे रिज़ल्ट सलाह जे हथ में आहिनि पर एतिरी महिनत थियल हुजे हिकिड़ो तव्हांखां सेटिस्फाई थी
0: वञे
1: सो दीज़ आर द कॉमन मिस्टेक के जेसि ताईं तव्हां वटि केसिस नथा अचनि तव्हां पंहिंजे सीनियर जे अंडर पढ़ो सीनियर जे अंडर सिखो सीनियर जेकी इंस्ट्रक्शन ॾे हुनखे फॉलो
0: फॉलो कयो
1: अगरि मिसाल तव्हांखे काई शइ मिले त उहा गाइडेंस वठो नथी सम्झ में अचे पुछो इवन एतिरे क़दुरु अगरि तव्हांखे कोर्ट रीडर खां बि पुछणो पए न सर मूंखे नथी सम्झ में अचे तव्हां हुन खां ई शइ पुछो वञी करे पुछणो न मुंझणो तव्हां को कॉमन मिस्टेक्स न थिए जजनि जे साम्हूं तव्हांखे एग्रेशन न ॾेखारणो ठीकु आहे तव्हांखे हम्बल तरीक़े सां छोकी तव्हांखे रिलीफ वठणो आहे तव्हां हम्बल तरीक़े सां हुननि खे ट्रीट कयो ठीकु पंहिंजे क्लाइंटेशन जे करे तव्हांखे कोर्ट स्टाफ सां नाहे विहणो छो अल्टीमेट पर्पज छा आहे टू गेट द रिलीफ रिलीफ ईअं मिलंदो न अगरि तव्हांजो बिहेवियर
0: तव्हांखे
1: त रिलीफ कीअं मिलंदो दे आर द एग्रेसिव हाणे तव्हांजो ठहियल टुक रिलीफ बि तव्हांजे हथ मां निकिरी वेंदो हिन जे करे टू बी हम्बल सबमिशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी ईअं न आहे त सबमिशन में माना तव्हां किरिया पिया हुजो डज़न्ट मीन सबमिशन जो मतिलब इहो आहे की बी हम्बल इन योर नेचर अगरि तव्हां उहो थी था वञो त पोइ इन में इहो आहे त तव्हांजी क्लाइंटेशन बि वधंदी तव्हांजो एटीट्यूड बि सुठो हूंदो ऐं प्लस में तव्हांखे सुठो रिलीफ बि मिली सघे थो पियो सॼियूं ॻाल्हियूं हिकु तरफ़ मेन जेकी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त अगरि तव्हांखे लॉ जी फील्ड में अचणो आहे त तव्हांखे स्टडी करणी आहे तव्हांखे स्टडी करणी आहे तव्हांखे ड्राफ्टिंग बि सिखणी आहे तव्हांखे मॉडर्न टेक्नोलॉजी सां अवेयर बि हुजणो आहे कंटेम्प्रेरी स्टडी बि तव्हांजी हुजे प्लस में तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजी जेकी रुटीन वाइज़ जेके केसिस आहिनि हुते बि नो हाउ हुजे
0: विदाउट डेट तव्हां रिकमेंड न कंदा त लॉ जी साइड अचो छाकाणि त स्टडी जेकी आहे त मैंडेटोरी आहे ईअं खाली डिग्री जेकी आहे त तव्हां जेकी कम अची न रहंदी ईअं आहे खाली डिग्री सां गॾु ईअं त लॉयर चवराए सघे थो पाण लॉयर नॉलेज हुजे न
1: अगरि मिसाल तव्हां डिग्री त वठी आहे तव्हां नॉलेज ई न
0: ऑलरेडी एडवाइसिस तव्हां काफ़ी सारियूं ॾेई वियो पर मां हिकिड़ी एडवाइस अञा तव्हां खां वठंदुसि जेके प्रैक्टिस जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि कोर्स जी तरफ़ हलिया वेंदा आहिनि इवन सेकेंड ईयर में ई हलिया वेंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हां छा एडवाइस ॾींदा
1: मां पंहिंजे कॉलेज में जिते मां पढ़ाईंदो आहियां मां ॿारनि खे बि इहो ई सम्झाईंदो आहियां की तव्हांखे हफ़्ते में अगरि सपोज चार ॾींहं तव्हांजी चार ॾींहं पंज ॾींहं क्लासिस हलंदियूं तव्हांखे ॿ ॾींहं मिलनि था फ्राइडे ऐं सैटरडे जेके फ्राइडे बि क्लास हले थी सैटरडे तव्हांखे मिले थो पियो अगरि तव्हांजे अंदरि शौक़ु आहे सिखण जो की मां प्रैक्टिस करणु चाहियां थो तव्हां वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं मुक़ररु कयो उन वीकेंड में तव्हां कंहिं सीनियर खां परमिशन वठी छॾो या इंडिविजुअल बेसिस ते तव्हां पाण कोर्ट अचो تا لائبریری میں پہ جات کو دو

0: वो सन कोलीग्स सन या तव्हांजा सीनियर आहिनि भाइर आहिनि ब्रादर सन या तव्हांजा पाड़े वारा आहिनि जेके वकालत करनि था पिया शाम जे टाइम तव्हां हुनजे चेंबर्स ते हलिया वञो वीकेंड में हिकिड़ो ॾींहुं ॾियो वीकेंड में ॿ ॾींहं ॾियो बाक़ी जेके चार ॾींहं आहिनि पंज ॾींहं उहो तव्हां पंहिंजी स्टडी खे ॾियो जेको टीचर अचे थो कुझु सेखारण थो अचे सपोज बेसिक नॉलेज अगरि तव्हांखे हूंदी न त प्रैक्टिस में अचण जे टाइम तव्हांखे तकलीफ़ न थींदी अगरि तव्हां वटि बेसिक नॉलेज न हूंदी तव्हां प्रैक्टिस में अची करे वरी उहे पंजनि सालनि जी महिनत कंदो वरी तव्हां उहो जेको आहे न थियोरेटिकली जेको तव्हां न पढ़ी सघियो वरी तव्हां प्रैक्टिकल लाइफ में अची करे सिखी माना जे सिखण वारे प्रोसेस सां हुनखे सिखी वठंदो
1: सही था चओ
0: बहितर इहो ई आहे त मुंहिंजी सजेशन इहा ई आहे की अगरि तव्हांखे इंट्रेस्ट आहे शौक़ु आहे माना नाहे पर एट लीस्ट तव्हांजो जेको प्रैक्टिसिंग ईयर हुजे न उहो तव्हांजो फोर्थ ईयर हुजे या फाइनल ईयर हुजे
1: ओके ओके
0: हुन में तव्हां साल पंहिंजो भले तव्हां पंहिंजो अचो पंहिंजे सीनियर्स खे ज्वाइन कयो छोकी तव्हां 90% कोर्स पंहिंजो कवर करे चुका
1: तव्हांखे
0: बेसिक नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे क्रिमिनल जी नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे फैमिली जी नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज तव्हांखे मिली चुकी हूंदी आहे अनु शहादत जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी स्पेसिफिक रिलीफ जी तव्हांखे नॉलेज मिली चुकी हूंदी आहे लैंड लॉज जी तव्हांखे जेको आहे न नॉलेज मिली चुकी आहे रेंट लॉज जी तव्हांखे नॉलेज हाणे सिर्फ़ तव्हांखे विद इन आख़िरी साल में छा करणो हूंदो आहे पाण खे पॉलिश करणो हूंदो आहे जंहिंमें असां छा थींदो जंहिंमें इंटर्नशिप बि ॿार जॉइन करे छॾनि उन सां छा थींदो तव्हांखे ड्राफ्टिंग सिखण सबमिशन अपीरिंग ऐं तव्हांखे जेको आहे न कोर्ट में कीअं तव्हांखे पंहिंजे केस खे रिप्रेजेंट कजे उहे शयूं तव्हांखे सेखारी वेंदियूं जेके अॻिते हली तव्हांखे प्रैक्टिस में कमु ईंदियूं
1: ऑल राइट शहबाज़ साहब थैंक यू सो मच तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो ऐं असांजे अॼु जे टॉपिक ते तमामु सुठी नॉलेज असांजे लिसनर सां एज वेल एज असांजे व्यूअर सां तव्हां शेयर कई अवांजा थैंकफुल आहियूं
0: मां वंस अगेन तव्हांखे चवंदुमि की फीडबैक लाज़मी आहे अगरि सपोज़ असां को ओपिनियन ॾिनो आहे अगरि कोई ओपिनियन सां अगरि डिफरेंस रखे थो पियो तव्हां पंहिंजा फीडबैक ॾियो बाबर तव्हां सां नंबर शेयर कंदो ऑनलाइन बि
1: असां
0: फेसबुक ऐं इंस्टा ऐं व्हाट्सएप ते जेके बि मीडियम्स आहिनि उते असां वेंदा आहियूं अगरि को ओपिनियन कंहिंखे लॻो की न वकील साहब जो ओपिनियन सही न ॾिनो आहे चङे तरीक़े सां त तव्हां असांखे ओपिनियन करेक्ट कराए सघो था ईंदड़ प्रोग्राम में असां हुनखे करेक्ट करे
1: छॾंदासीं
0: छोकी हर ॾींहुं सिखण जो ॾींहुं हर जॻहि कुल इल्म त असां बि न
1: आहियूं
0: जेको असांखे वक़्तु ॾिनो आहे असां उन जो ई फ़ाइदो वठी करे तव्हां ताईं ॻाल्हियूं पुॼायूं था पिया
1: ऑल राइट सो बिल्कुलु व्यूअर्स तव्हांजी फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो असांजो नंबर आहे 03000113488 अॻे प्रोग्राम में वरी नए मौज़ू सां गॾु अव्हां सां मुलाक़ात थींदी तेसीं ताईं अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमान को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम इससे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रखती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: मुझे और पता चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: बात मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो बरसात नए बोर्ड दौरान फौत थी वेलनि ख़ानदाननि जी मदद ऐं तबाह थी वियल घरनि जी ॿीहर तामीर जो हुकम। इम्कानी बरसात नए बोर्ड जे नुक़सान बाबति कयल इजलास में वज़ीर आज़म पारां बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में बिजली ऐं रोड रस्तनि जी बहाली लाइ बि क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त मुल्क जे मुतासिर इलाइक़नि मां बोर्ड मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वञे। वधीक बरसात ऐं इम्कानी बोर्ड सबबि NDMA ऐं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जूं टीमूं मदद लाइ तयार आहिनि।
4: पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके KMC हो चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए हैं। जो पब्लिक पार्क थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे MQM लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
3: वज़ीर शजील नामेमण चयो आहे त कराची जे मसइलनि जे ज़िमेवार MQM आहे। हिकु साज़िश ते हड़तालूं करे सनअतनि खे तबाह कयो वियो। मुस्तफ़ा कमाल ऐं ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जी हड़तालनि जी हिमायत वारियूं वीडियोस अॼु बि मीडिया वटि मौजूद आहिनि। हिकु हिकु हड़ताल दौरान 30, 40 ऐं 50 ताईं लाश खयां वेंदा हुआ। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे शजील मेमण चयो त नफ़रत जी सियासत कंदड़ जमायतूं पंहिंजे ई सूबे खे बदनाम कनि थियूं। कराची जा मसइला हल करण लाइ मस्बत ऐं ज़िमेवारणी सियासत जी ज़रूरत आहे। PP हमेशह क़ौमी मफ़ाद खे अवलियत डि॒नी आहे। सिंध जा माण्हू बाशूर ऐं समझदार आहिनि। उहे ॾिसनि पिया त हर ॾुखे वक़्त में केर साणन गॾु बीहे थो। सिहत वारे फाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त सूबे जी ॻाल्हि करण कुफर न आहे। तरीक़ेकार ते ॻाल्हि थी सघे थी। कराची में तकलीफ़ खे ख़िताब कंदे मुस्तफ़ा कमाल चयो त हीउ निज़ाम 70 सालनि खां नौजवाननि खे गद्दार बणाए रहियो आहे। हालतनि खां तंग थी माण्हू हथियार खणी जबलनि ते वञी वेठा आहिनि। आइन में सूबा ठाहिण जो तरीक़ो दर्ज आहे। आइन में 27 तरमीमूं थी चुकियूं आहिनि, जंहिं जो मतिलब आहे त आइन में खामियूं मौजूद हुयूं। कराची वासी पाणी ख़रीद करे पी रहिया आहिनि। वज़ीरनि ऐं आफ़िसरनि जा टैंकर हली रहिया आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

0: आए दिन पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

पर पॉलिसी का सिवाय मनपसंद मुलाजमन के रिश्वत एवज पोस्टिंग देने का इल्जाम। अली अकबर के तालीम खाते में हटाने के ॾींहुं बाद आबपाशी खाते में सेक्शन ऑफिसर मुक़रर कयो वियो। तालीम वारे वज़ीरी ट्रांसफर खां सवाइ मनपसंद मुक़ररियुनि ऐं मुबैना माली बेज़ाबतियुनि जी इंक्वायरी मुक़ररु करे छॾी।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: अप्रैल से जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए सवाले इश्क, सुनहरी तितलियाँ और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: once you kind of sit up, I thought sab ko ek hadsa zaruri hai.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए.
1: आप
4: उसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे. ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटीशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है.
5: पीटीआई वानी जी कई बार इना वचकड़ी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहनी अदालती दरख्वास्त दाखिल कराए सदी जिम्मेवार के तोहनी अदालत जो जिम्मेवार करार दियण पीटीआई वानी के फौरी तौर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण संदस तिबी मायनो करण की इस्तदा उजैर भंडारी सलमान अक्रम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ कानून वाले वजीर आजम नजीर तारण सुत समा वाले वजीर अताउल्ला तारण के धुर बनाए वो दरख्वास्त में सजा कई वही है त अदालती हुकुम से अमल न कदड़ जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब कर वे खेन तुहीन अदालत जो जिम्मेवार करार दई सदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वे.
6: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे जुमले कसते थे. क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ. क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया. क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया. अब कंटेम्प्ट एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ. वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई. और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई बयानबाजी भी हुई रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया तो ये वायलेशन और कंटेंट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने

0: तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश पेशाश हैं।
1: पाकि हुकूमत पीटीआई वानी जी अस्पताल मुंतकली बारे मामले ते तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भजगिरी जो जिम्मेवार करार दई छो। पाकि वजीर अल्लाह तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बहरा टोलन की सूरत में मानू जमा किया गया। पीटीआई जब मानू सिक्योरिटी रिस्क बढ़ी वह तेरे बानी के पिम्स अस्पताल नियो पो। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जहां डॉक्टर्स मौजूद हुआ जहां सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले ते सियासत करण का मना न कर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान दई अदालती हुक्म की भजगिरी कई पई तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण गर्भातियन पार्टी कई। अदालती हुक्म से अमल कदे पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कराया वो तिबी मुआइने वक्त पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत की वर न चढ़ वे कामिया पीटीआई बानी जी अस्पताल मुंतकली बाबत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधण लाय दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए छी। दरख्वास्त पीटीआई बानी जटियाला जेल मां निजी अस्पताल मुंतकली मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वारा हुक्म चैलेंज किया गया है। पाकि हुकूमत रावलपिंडी में छह महीन लाए फौज मुकर कर मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर कर मंजूरी आईन के आर्टिकल 245 तहत डी वही। पाक फौज टे कंपनियों छह महीन ती रावलपिंडी में मुकर हूंद जारी कल पधराई मूजिब फौज
2: पॉसिबल है निकलने से पहले मेंटेनेंस करवानी हो ताकि रस्ते में न कोई खुआरी हो। जब बजटिंग
1: फौज मुकररी की मंजूरी बाद जे घरू खाते की दरख्वास्त दिनी वही। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मनशिया की रोकथाम इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार बढ़ाने के इतफाक। सदर आसपुरी जरदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में सहकार बढ़ाने से भी जोर भर वो। सदर आसपुरी जरदारी पाकिस्तान शेन की मलेशिया की मार्केट्स ताई पहुंच से जोर भरीदे तो मलेशिया में चावर पटाटन कणक जानवर की खुराक की तलब मौजूद है। घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात में मौजूद हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बरसात ने वोट दौरान फौत थी वेलन खानदान की मदद ए तबाह थी वेल घरन की बीहर तामीर जो हुक्म। इम्कानी बरसात ने वोट के नुकसान बाबत थियल इजलास में वज़ीर आज़म पारा वोट मुतासिर इलाकन में बिजली ए रोड रस्तन की बहाली लाए भी कदम करण की हिदायत। वज़ीर आज़म के ब्रीफिंग में बुधा वो तो मुल्क के मुतासिर इलाकन में वोट मुतासिर के महफूज हंधन डां मुंतकिल कयो पियो वञे। वधीक बरसात ए इम्कानी वोट सबब एनडीए में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट जी वेदत सिंधु दरिया के पानी वसीला नए एनएफसी अवार्ड में सिंध के हिस्से में मुबैना कटौती खिलाफ हैदराबाद में वेदत सिंध वाद। सिंध एक्शन कमेटी के सट्टे पोश मोहम्मद सीधी फ्लाईओवर वार गेट तक मुख्तलिफ कौम पर

0: हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम की वजह से ही कराची के जो निजाम था, चाहे आपके केएमसी हो चाहे आपकी डीएमसी हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। एमक्यूएम की राबता कमेटी में आज भी देखेंगे तो आधे आपको बलदियाती नुमाइंदे मिलेंगे जो कि बलदियाती इदारों से तनख्वाह ले रहे हैं और राबता कमेटी में भी बैठे हुए। जो पब्लिक पार्क्स थे उनको शादी हॉल किसने बनाया, आप पूरी लिस्ट उठा के देख ले, सारे एमक्यूएम लीडर मिलेंगे आपको। जाती तौर पर शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
1: जैसे वजीर शजी नामे वन चवाए थे कराची के मसलन जी जिम्मेवार एमक्यूएम है, एक साजिश थे हड़तालू करे संगठन के तबाह कर कमाल है खालिद मकबूल सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वारियों वीडियोज अज भी मीडिया वट मौजूद आए। एक हड़ताल दौरान 30, 40, 50 तीन लाश क्या वेंदा हुआ। कराची में मीडिया से गाले शजीद मेमन चो नफरत की सियासत कर जमातू पैं ही सूबे के बदनाम कन थी।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
0: आप सुन रहे थे
3: बिल्कुल वाजे है, अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, किसी ड्यूटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा

0: कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर कैसर सुल्तान को लेकर गए और फिर उनको वापस भी आया काम था। लिहाजा ये बयानियां मुकम्मल तौर पर झूठा है कि हाँ तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पाकिस्तानी कौम के खिलाफ। उसके बाद अदालत ने उनके साथ
1: मुंतकली वाले हुक्म जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराए सदी जिम्मेवारन के तो पानी के पूरी दौर शिफा इंटरनेशनल दाखिल कर दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ कानून वाले वजीर आज़म नज़ीर तारण सुख समा वाले वजीर अताउल्ला ताड़ के धुर बनाया दरख्वास्त में जुदा कई वही है तो अदालती हुक्म से अमल न कर जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब किया वे खेन तो ही अदालत को जिम्मेवार करार दई सदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वही।
2: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ये ऑर्डर आया ये जब वजीर आजम भी थे तो ये सेहत उस ऑर्डर पर अमल दर्ज बनाया। अब कंटेंप्ट एक कंटेंप्ट जरूर कंटेंप्ट किसने की और कैसे सियासत नहीं करेंगे फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके ऊपर हिदायत

पीटीआई जा माण्हू सिक्योरिटी रिस्क बणजी विया, तंहिं करे पाणी खे सियासत करण खां मना कयो हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस